0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.

0: रेडियो मस्ती 24/7 पर लव यू जिंदगी
1: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
0: हमें दुनिया क्रेजी बोलती है पर कभी किसी ने ये देखा है जो अभी अभी क्रेजी हरकत ये हनीमून पर पति जी ने करी है? क्यों अंतरा
2: बड़े दिनों बाद खबर चुराते हुए रेणुका फुल ऑन एकदम कॉन्फिडेंस में यहाँ पर आई नो
0: हनीमून साथ में बात करते हैं इसके बारे में। सो ये हनीमून भाई आप देखिए हनीमून पे बंदा जाता है हनीमून साथ में हनी मून देखेंगे राइट। अब भाई ऐसा है कि न्यूली मैरिड कपल टाइम इकट्ठा करो स्पेंड बॉन्ड करो अलग अलग तरीके से बॉन्ड करो राइट। और अब यहाँ पर मेरठ से ये जो पति पत्नी वहां पर पहुंचे वहां पर पति को लगा कि चलना यार माँ बाप और सिबलिंग्स को भी ले जाता हूँ भाई बहन को भी ले जाता हूँ घूमना फिरना हो जाएगा परिवार के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ऑब्वियसली द गर्ल हु वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो स्पेंडिंग टाइम विद द हस्बैंड वहां पर होगी लड़ाइयां और शादी वादी छोड़ो अब तो सीधा फैमिली काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं लेकिन अटेम्प्ट्स जितने भी कर लो रिकंसिलेशन के अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा। बट अंतरा यू टेल मी क्या सोच रहा था ये आदमी क्या सोच रहा था?
2: मुझे तो सीन याद आ गया मेरे अंदर का 90s बाहर आ गया
0: है ना
2: रामपुर चले
0: सीरियसली आई टेल यू बट आई जस्ट फील क्योंकि भाई लड़की ने तो ये सोचा था कि हनीमून होगा प्राइवेट गेटअवे होगा न्यूली वेड्स होंगे आपस में जानेंगे थोड़ा घूमेंगे मजा आएगा शॉपिंग करेंगे लेकिन पति कहता है मैं चाह रहा था कि सब खुश रहें। मैं पति बहुत अच्छा आदमी है चाहता है कि सब खुश रहें लेकिन उसी टाइम खुश रहें मतलब है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस।
2: आई थिंक जिंदगी लाइफ के जो लेसंस है ना वो कभी कभी बड़े डिफिकल्ट तरीकों से लोगों को समझ में आते हैं और इसकी जिंदगी में वो डिफिकल्ट टाइम आ चुका है। आई एम श्योर दैट ही विल लर्न दिस लेसन।
0: और प्रॉब्लम सारी ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद में ना लड़की को ब्लेम कर दिया जाएगा है ना कि देखो काउंसलिंग पे भी जा रही है लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं है ग्रेजुएट लड़की क्या ले आए हैं मतलब उसने तो हमसे घर से तुड़वा रही है वो है ना वो काम शुरू हो जाएंगे।
2: वो तो मतलब ये तो मतलब बहुत पुरानी बात हो चुकी है ये तो कहना ही है लाइक अब तो आई थिंक लड़कियों ने भी मान गया कि यार बोल दो उनको यही बोलना है वही पुराने पिछड़े डायलॉग तुम्हारे अभी तक वो चेंज इवॉल्व तो हुए नहीं है जो सोचना है सोचो।
0: और हम यही सोच के शादी करते हैं हम कैसे तोड़े हमें तो कुछ और आता ही नहीं है हमें तो जिंदगी में और कुछ।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live keeping the world Bollywood entertained anytime anywhere।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: और आपने भेजा कि नहीं हमें टेक्स्ट अभी तक 9151-8963 फॉर द लायन सिटी चैलेंज. जी हाँ बिल्कुल.
4: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमी.
3: लेकिन इस वाली खबर में कोई गैस नहीं है, ये सच है बिल्कुल. क्यों अंतरा?
4: Absolutely right, भाई. ये जो है इतनी बार बोल चुके हैं और जब मौका हाथ से निकल जाता है ना तो हमेशा तभी सबको याद आता है कि अरे हम कह रहे हैं. एंड देर आर सो मेनी टाइम्स वी रैंडमली शोज में हम आपसे जनरली यू नो सवाल जवाब करते हैं एंड यू आर लाइक राइट आउट देयर कि अरे इसका जवाब तो ये है. हम कह रहे हैं कि ऑफकोर्स ये जो एक वन ऑफ अ काइंड गेम शो हम आपके लिए ला रहे हैं, दिस इज दैट मौका वेन यू कैन फ्लेक्स कि आपको कितना पता है.
3: बिल्कुल
4: अच्छे से पता है.
3: बिल्कुल. और सिंगापुर ने कभी ऐसा गेम शो देखा नहीं है कि कोई आकर हॉट सीट पर बैठता है और फिर उसके आसपास कैमरास होते हैं और फिर उससे सवाल पूछा जाता है और फिर तालियां बजती हैं और बहुत कुछ होता है और आप जीतते हैं. सो वेल ऑफ कोर्स यहां पर सबसे पहले आपको ये करना है कि हमें व्हाट्सएप भेजना है. आपको मिलेंगे दो सवाल. उन सवालों का जवाब अगर आपने सही दिया है तो आप जाएंगे दूसरे राउंड में और दूसरा राउंड होगा प्रॉपर शूटिंग इन द स्टूडियो जहां पर आप आएंगे और आप खेलेंगे वो वाली गेम. And of course, आप जीतेंगे. You will win cash, you will win prizes, and you will have a lot of fun above everything else. क्यों अंतरा है कि नहीं?
4: भाई, I think winning is the thing. Okay? मैं भी try करना चाहती हूँ, लेकिन कोई नहीं. आप हमसे भी मिल लेना वहाँ पे. But then that is the thing that it is going to be just quite amazing. आपको ऐसी feel आएगी ना कि अलग ही level हो जाएगा. So Lion City Challenge, it's the smartest game show in Singapore, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ knowledge की जीत होगी and आप जीत सकते हो.
3: बिल्कुल एब्सोल्युटली. और आपको पता है कि मस्ती में और कुछ हो ना हो, यू विल डेफिनेटली रीच द लाइमलाइट एंड यू विल हैव ब्रैगिंग राइट्स, जिसे कहते हैं ना, जा जाके अरे तुम लायन सिटी चैलेंज पर नहीं गए, हम तो गए हैं. तो कम ऑन गाइज, बी अ स्पॉट एंड राइट टू अस राइट अवे. लिखिए लायन एंड सेंड योर व्हाट्सएप टू 9151-8963. सी यू देयर.
5: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: बाप रे, क्या क्या चीजें लोग सोच लेते हैं, कैसे कैसे क्या मतलब. एंड दैट इज व्हाई ये शो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इन सब के बारे में बात कर सके.
2: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
3: Musty Madness है, Radio Musty 24/7 है. जी हाँ, और इस टाइम आप हैं, हम हैं, और अगली हमारी अमेजिंग सी खबर है जो अंतरा जी बताएंगे आपको.
1: भाई, क्लेयर हॉब्सन करके यूके की एक परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट जो है वो है. अब क्या हुआ कि शी लॉस्ट अपना जो है कुत्ता, वाज अ टेरियर, एंड मतलब 20 साल से वो कुत्ता उनके साथ था. सो ऑब्वियसली द कनेक्शन वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उनको बहुत ही फील हुआ होगा. माय होल हार्ट गोज आउट टू हर. बट जब वो गई टू पिक अप हिज एशेस, उन्होंने जो है बहुत ही कुछ यूनिक किया. इन्होंने बुक किया अपॉइंटमेंट टू गेट हर आईलाइनर टैटूड.
3: ओके,
1: गर्ल्स यू नो थिंग्स यू कैन गेट डन नाउअडेज. सो ये जो टाइमिंग है, जस्ट गिव हर दिस आइडिया जहां पे शी आस्क्ड हर कलीग टू मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कुत्ते के एशेस डायरेक्टली इनटू द सेमी परमानेंट आईलाइनर इंक बिफोर टैटूइंग इट.
3: अच्छा.
1: Yeah, and she said so that he could still see the world through her eyes.
3: क्या बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात. पर पता है क्या, वो जो टैटू है वो थोड़े टाइम में तो चला जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो
1: I have no idea. मतलब there are खबरें जहाँ पे I sincerely don't know how to react to this. मतलब ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड हर सेंटिमेंट, बट देन
3: या ऑन दैट नोट, आई हैव अ फ्रेंड हुज डॉग पास्ड अवे मेनी इयर्स अगो एंड शी हैज स्टिल केप्ट द एशेस ऑफ द डॉग इन अ कंटेनर इन हर हाउस एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट गो. सो वेल, पेट्स के साथ में अलग ही प्यार होता है यार. हम कौन होते हैं जज करने वाले, अपना अपना प्यार दिखाने का तरीका है. ओहो, इंसानों से तो बेटर ही होते हैं ना वो वैसे भी.
1: गुड मॉर्निंग.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: They are fresh. They are.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: दुनिया में खबरें अजीबो गरीब हैं, तभी तो हम हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गाइस, दिस इज मस्ती मैडनेस. और मस्ती मैडनेस की अगली खबर हैरान तो करेगी आपको, एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: क्या हुआ,
4: कौन सी खबर हैरान नहीं करती है? मस्ती मैडनेस पे वही खबरें आती है जो हैरान कर देती है.
2: सही फरमाया आपने. तो भाई 5 साल से इस पति पत्नी की शादी हुई है और दे प्रैक्टिस कॉन्शियस सेलिबसी. मतलब अब आप ये सोचो, इन्होंने जब शादी करी थी, दे डिसाइडेड कि देयर विल बी नो सेक्स बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. लेकिन अगर उनकी बनती गई और वो आपस में रहना चाहे तो आगे जाके बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं. सो वेल, कॉन्शियस सेलिबसी. अब भाई बड़े सारे लोग बोलते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी इज अ पार्ट, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड स्पेशली शादी, ये वो, यू नो. सो हाउ कैन यू बी लाइक दैट? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो. तो इनका नाम है संचारी एंड निरंजन सचित, ठीक है. एक कंपनी है जिसका नाम है सोल ग्रो जेन अकेडमी और ये उस कंपनी के ओनर हैं. अब हुआ कुछ ऐसे, किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या मतलब व्हाई दिस? तो उन्होंने कहा 5 साल से हम साथ हैं लेकिन हमारा जो ये अरेंजमेंट है फिलहाल इसलिए चल रहा है बिकॉज जो लड़की है शी वाज हीलिंग फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अ पेनफुल ब्रेकअप, ठीक है. तो उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी डिड नॉट फील सेफ. और निरंजन जो है लड़का, ही वॉज प्रैक्टिसिंग सेलिबसी एज अ डिसिप्लिन, मतलब सेल्फ मास्टरी एंड स्पिरिचुअलिज्म. सो दोनों ने कहा हम ढूंढ ही नहीं रहे थे किसी पार्टनर को, लेकिन हम मिले, हमने एक दूसरे को समझा और फिर फ्रेंडशिप से हमें हो गया प्यार. अब जब प्यार हो गया तो हमें लगा हम दोनों एक दूसरे के साथ सेफ हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं एंड वी कंटिन्यू टू बी इन लव. तो भाई अगेन विदाउट जजिंग आई वुड से इट इज क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, राइट?
4: It is actually very, very nice. And people don't talk about emotional safety too much. But then it's a very, very important aspect of any relationship. आपके खुद के, मतलब जितने भी लोग tuned in हैं, वो खुद के relationship में भी कितना जरूरी होता है वो aspect that and some जब इन दोनों, I think it's a very, very good thing. Very, and it also shows that how much respect these two people have for each other.
2: Absolutely. So on Radio Masti, guys, कुछ गलत नहीं है. जज मत करो, किसी भी खबर को जज मत करो. बस हमसे अगले घंटे मिलो, हम और खबरें देंगे आपको. हमारे सामने जज मत करो. माइक बंद होने के बाद हम भी करेंगे, तुम भी करो.

0: एनवायरनमेंट में काम करना कैसा होता है, कैसा आप बताएं?
1: तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, तुम्हें क्या पता।
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
1: मोती दान किए होंगे, मोती तभी मिलते लोगों को अच्छे वाले बॉसेस, मोती दान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा जब तक कुर्सी से ऊपर उठती है तब तक मैं ही आगे बता देती हूँ क्या चल रहा है।
3: चलो कार की तरफ चलते हैं सीधा का सीधा। तो क्या हुआ कि भाई ये हमारे जो भाई साहब है इनका नाम है रायन, ठीक है। रायन जो है अपना काम वाम करके चला गया घर। घर जब गया तो अगले दिन सुबह सुबह इसके पास आया ऑफिस से इसके ईमेल। अब आप, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ ईमेल में क्या लिखा हुआ है। अब आप बताएं कि ये मतलब कहाँ का इंसाफ है इस लड़के के साथ, और क्या आप इससे पूरी तरह से अग्री करते हैं? तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है लीविंग अर्ली यस्टरडे ? फिर रखा है हाय रायन, आई नोटिस यू हेडेड आउट अ लिटिल अर्ली यस्टरडे व्हिच वाज 4:57 PM। व्हाइल वी अप्रिशिएट योर वर्क, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर बीइंग फेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम। टू मेक अप द टाइम डेफिसिट, यू कैन ईदर टेक अ स्लाइटली शॉर्टर लंच टुडे और स्टे अंटिल 5:03 PM।
1: ओह माय गॉड, नो।
3: Yeah, we are watching the clock a bit closer moving forward because we are a team. तुम 3 मिनट पहले चले कैसे गए रायन?
1: कितने वेले हैं ये लोग वहां पर रायन के आसपास? 3 मिनट कि तू कम खा ले 3 मिनट लंच में, या तो 3 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले, क्योंकि मतलब सूसू वगैरह जाता है तो भी नोट करते हैं क्या कितनी देर लगा कर आया है? मतलब
3: आई हैव नो आईडिया। मैं तो ये सोच रही थी ये पढ़ते हुए, कहां मैं और रेणुका उस दिन फ्राइडे को शो कर रहे थे साथ में, और हम सोच रहे थे कि टॉप 10 का 10 लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते
1: बताना नहीं था।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: DNA. डीएनए टेस्ट कराना ये कोई नई बात नहीं है, डीएनए टेस्ट ही तो कराना है, मतलब दुनिया कराती है डीएनए टेस्ट, है कि नहीं अंतरा जी? कराती है ना डीएनए टेस्ट सारी दुनिया।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: आजकल मैंने ज्यादा सुना हुआ है, पहले के टाइम पे कहाँ पे ये सारे टेस्टें होती थी, मतलब आजकल है कि बच्चे करा रहे हैं कि नहीं हमें डीएनए टेस्ट कराना है, हमें पता करना है।
2: लेकिन इस औरत की जिद देखो, तो ये बेचारी थोड़ी सी गरीब औरत, अब हुआ ये कि इसकी एक बेटी हुई 2006 में, और 2006 में अब जो औरत है उसने कहा, जब पति ने लांछन लगाने शुरू किए मेरा बच्चा नहीं है एंड ऑल दैट, तो शी सेड तो तू करा लेना डीएनए टेस्ट, ठीक है ना, करा ले, खत्म कर। अब पति कहता है कि मैं करूंगा, टेस्ट कराने को मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन खर्चा तू उठाएगी। अब इसने, औरत ने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो तू ही देगा ना,
4: उसको है तो, हाँ पैसे वो उसको देने चाहिए ना, शक उसको है ना, हाँ, औरत को तो शक भी नहीं है,
2: पर बेसिकली उसको शक भी करना था और प्रूव भी नहीं करना था। सो होता है, ऐसे होता है, टॉक्सिक, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो अब इस औरत ने भी क्या किया, 20 साल इसने मेहनत करी, ठीक है, लड़की बड़ी हो गई, एडल्ट हो गई, सब कुछ हो गया, और 20 साल तक इसने पैसे इकट्ठा किए किसी भी तरीके से, और फिर ये पहुंची जाकर कोर्ट रूम में और कहती है बुलाओ उसको पेटर्निटी टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो मतलब तू सोच कि जज भी ऐसे हैरान हो गया कि तू क्यों ऐसे कर रही है। उसने बोला नहीं, इसने मेरे पे शक किया और मैं उस शक को बिल्कुल भी सहूंगी नहीं, मैं औरत बलिदान करने को तैयार हूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन डेफिनेटली पेटर्निटी टेस्ट तो होके रहेगा। वाह क्या बात है।
4: Totally appreciate her dedication in doing such things, but then you really have to choose your battles. Haan. And this was not one of them which you would have gone for. But smartly इसको handle किया जा सकता था, but then okay, your choice.
2: नहीं बट ठीक है,
4: your choice.
2: ठीक है, उसके बाद उसने उसे divorce कर दिया और उसको alimony मिली। कहती अब जब हार्ड में prove हो गया ना तेरा बच्चा था, अब तू पैसे दे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Rani Singh.
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: एक औरत थोड़ी देर पहले जिसने इंतजार किया समथिंग टू प्रूव, मैं लाई हूँ एक और औरत. लेट्स टॉक अबाउट इट. मस्ती मैडनेस.
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
5: औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है. आई डोंट नो व्हिच वन इज राइट. रेडियो मस्ती 24/7 पर कंफ्यूज करती हुई ये औरत इस टाइम पर कौन सी खबर है बताओ उस औरत की. बताओ बताओ अंतरा.
3: तो भाई हमारी ये वाली औरत है तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया कुछ ऐसा. फेसबुक मार्केट प्लेस जो होता है ना, जहाँ पे आप लिस्टिंग्स वगैरह डालते हो, वहाँ पर इन्होंने अपने हस्बैंड को ऑफर करते हुए $1 और बेस्ट ऑफर करके डाल दिया वहाँ पे कि लेके जाओ उसको $1 में लेके जाओ या फिर जो भी बेस्ट ऑफर है.
5: $1 इतना महंगा?
3: हाँ बहुत ही ज़्यादा. But उस लिस्ट तो she got responses also. This thing described the husband as used daily, makes strange noises when asked to do chores, includes emotional baggage at no extra charge, needs occasional software updates as well.
5: ठीक है.
3: तो अब क्या है कि ये पोस्ट हो गया वायरल. 800 और 900 मैसेजेस आए. बात तब आगे और ज्यादा बढ़ गई जब वन इंटरेस्टेड बायर आस्क्ड इफ डिलीवरी वाज अवेलेबल एंड ये जो बंदी है इसने लिखा ओनली इफ यू ब्रिंग अ ट्रेलर. ठीक है. अब लोग उसके साथ साथ, अब हस्बैंड को कैसे पता चला, इसके जो कोवर्कर्स है वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे, भाई तू मार्केट प्लेस में बिक रहा है, क्या चल रहा है, वो व्हाट इज हैपनिंग. इंटरेस्टेड पार्टीज आर कॉलिंग हर एंड यू नो शी इज मेकिंग दीज डील्स एंड एवरीथिंग. कोई मोर अपना ऑफर कर रहा है, कोई दो गोट और एक स्मोकर ऑफर कर रहा है कि ये लेके जाओ अपना हस्बैंड दे दो हमको. एंड या शी इवेंचुअली गॉट अरेस्टेड फॉर डूइंग सो. वो लिस्टिंग हटा दी गई बट दीज लाइक इट वेंट लाइक crazy.
5: क्या बात है.
3: Hilarious.
5: मतलब हैरानी की बात यह है कि बोली लग रही थी इसके पति की और इसने $1 मांगा था, फिर भी लोग बदले में अपनी भैंस और गाय देने को तैयार थे. $1 नहीं दे रहा था कोई. Talk about butter. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिल्कुल खिलाफ मस्ती मैडनेस पर हम बिल्कुल गलत बात बिल्कुल नहीं सुननी ये बात. रेडियो मस्ती 24/7 पर वापस आते हैं, शादी की बात करते हैं. गुड मॉर्निंग.

0: बिहार चलते हैं। जी हाँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार चलते हैं। अंतरा और मैं तो जा ही रहे हैं, आपको आना है, आप भी आ जाओ।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: क्यों अंतरा, चल रहे हैं?
2: अरे आएंगे आएंगे, जरूर सभी आएंगे, इंटरेस्ट तो सबको है, ऐसे वालों में तो सब आएंगे।
0: तो अब ऐसा है कि नयन श्री कुमारी जो 22 साल की है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और उनकी कजन राखी कुमारी 23 साल की, ठीक है। अब दोनों इकट्ठा बड़े हुए, भाई बहुत ही प्यार था दोनों बहनों में। फाइनली वो प्यार जो है ना, कुछ ज्यादा ही अलग तरीके का हो गया जब वो दोनों पढ़ाई कर रही थी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन पटना। फिर वो प्यार को रिश्ते में बदलना चाह रही थी दोनों। तो जो नयन श्री कुमारी है 22 साल वाली, उन्होंने पर्सनल बैंक लोन लिया 8 लाख का, ठीक है, और उन्होंने राखी कुमारी के जेंडर एफर्मेशन सर्जरी करा दी पूरी की पूरी। अब राखी कुमारी बन गई राहुल कुमार, और फिर दोनों ने एक ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी में जाकर लोकल टेंपल पर अपना अपना जो रिश्ता है उसको हमेशा के लिए साकार कर लिया। और एज कंसेंटिंग एडल्ट्स, लोकल अथॉरिटीज ने पूरा रिस्पेक्ट किया है उनका लीगल राइट टू चूज देयर ओन लाइफ पाथ। एंड पब्लिक अटेंशन है, डिबेट है, बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम पर है, इधर उधर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हुआ क्या वो सही हुआ अंतरा जी, या नहीं होना चाहिए था इन बहनों के बीच ये सब? I feel good. Coming up.
2: भाई अब क्या ही करोगे, क्या कर रहे हो लड़को यार, मतलब सीरियसली। अब लड़के रेणुका 370 रुपए की बिरयानी के साथ डील मांगेंगे तो अब यही होगा ना उसके बाद कि भाई तुम छड्डो परे, तुम रहने ही दो।
0: सही बात,
2: तुम अपना रखो।
0: 370 की बिरयानी के बारे में बात आज शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हमारे बाकी सारे शोज पर तो हम कर ही लेंगे। लेकिन ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, बात ये होती है कि मेरा मानना है कि नॉन वेज लोगों को जानवर इसलिए खाने पड़ते हैं क्योंकि वेजिटेरियन लोग जानवरों का सारा प्लांट्स खा जाते हैं, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है, राइट, इसीलिए हमको उनको खाना पड़ता है ना। उसी तरीके से लड़कियों को लड़कियों से शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कोई ढंग का लड़का नहीं बचता, क्या करें फिर। इसमें ये तो मजबूरी है, जिंदगी की मजबूरी है, बिल्कुल।

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: आइए आइए, वेलकम। और रेडियो मस्ती 24/7 पर बस जाते जाते मैं अंतरा जी से एक छोटी सी रिडल, जो कि मैं हमेशा से चाहती हूँ पूछना, मतलब नो पूछूंगी जरूर। मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
3: ओ बाय गॉड, ओके, या लेट मी पुट माय ब्रेन टू दैट मोड। ओके,
2: यू मीन लेट मी पुट माय ब्रेन असाइड, बिकॉज दीज आर गोइंग टू नॉट रिक्वायर एनी ब्रेन, राइट?
3: Yes.
2: So, एक बात बता, एक इंडियन बच्चा जिसकी डबल चिन है, उसे हम क्या बुलाएंगे?
3: I know this.
2: बता, बता।
3: चिंटू, चिंटू।
2: अगला वाला।
3: Actually, kept my brain aside.
2: अगला वाला, अगला वाला। क्योंकि तुम बंगाली हो, a Bengali taking a dump after eating ice cream. क्या बोलेंगे हम उनको? पॉटी करने जा रहा है आइसक्रीम खाने के बाद बंगाली, क्या बोलेंगे?
3: नो आइडिया।
2: हागनदास। बस अब मेरा वीकेंड मोड ऑन हो रहा है रेडियो मस्ती 24/7 पर। अंतरा जी चलते हैं, ठीक है, लौट के मिलते हैं आपको। आजकल बाय द वे गाना नंबर एक कौन सा चल रहा था लास्ट वीकेंड पे, पता आपको गाना नंबर एक कौन सा था?
3: मुझे जो मेरे मेरे सूत्रों ने बताया था, बीच में आपने उनको टेरराइज किया था किसी एक गाने से, गाना नंबर एक डाल के, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं अंतर, तुम्हारा ना तुम्हारा वाला तीन पे डाल दिया है, जाइए सजना, अभी भी एक पे ही जा रहा है।
2: ऑफ कोर्स पिछली बार गया था एक पे, अब आज पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ पिछली बार तो गया था। और वही गाना जो जिससे मतलब मैंने उसको काफी वन पे एक समय पे पहुंचाया था, वो तो नंबर 20 पे ही जाने वाला आज के दिन में, पक्की बात है। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंस करने के लिए आप जरूर आए शाम को 5 से 8, मिले हमको मस्ती टॉप चार्ट्स पर। माशूका प्लेइंग कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से, और शाम को भी चलेगा ये, कौन से नंबर पे ये मुझे नहीं पता। रेडियो मसी 24/7, टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। गुड बाय अंतरा, इट्स द वीकेंड, शाम तक रुकोगी ना?
3: वो टीना बुला रही मुझे।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: सिंगापुर। बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Singapore, prepare for impact.
2: 3, 2, 1.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Don't stop the music, Rainbow, sing it!
5: नाचने का मन है, मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
6: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
7: Check it out.
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
9: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो, आदाब, नमस्कार, केम छे, सारू छे, अक्का सिंगापुर मारू छे। मैं बोले तो समर आ गया है लेकर यादों का कारवां। कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही मजे में होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। भाई आज हम बॉलीवुड के 2003 और 2004 की बेहतरीन फिल्में और उनके गाने और उनका किस्से लेकर आए हैं। शुरू करें आज का कारवां। तो क्या भाई लोग, बोले तो कसक, अपुन को आज रैपचिक गाना सुनाने का मन कर रहा है। अरे आप चौंकी मत, मैं वही हूँ आपका पहले वाला समर। मैं तो बस यूं ही मुंबईया वाली बोली बोलने की कोशिश कर रहा था, भाईगिरी वाली लैंग्वेज बोलकर देख रहा था। दरअसल क्या है ना कि आज जिस मूवी के गाने के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उस फिल्म ने और उसके गानों ने ऐसा धमाल मचाया था साहब, ऐसा धमाल मचाया था कि पूछे ही मत। पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा। ये फिल्म साल 2013 की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई थी। छोटे बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, हर किसी को इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि कईयों ने तो इसे एक से तो ज्यादा बार देखा ही देखा, 10-10 बार भी देखा। और अब भी कभी ये टेलीविजन पर आ जाए ना तो ओ, इसे कोई देखना मिस ही नहीं करता। कौन सी है फिल्म, बताइए बताइए, एनी गैसेस? जिन्होंने गैस कर लिया और सही गैस किया उनके लिए तालियां, और जो गैस नहीं कर पाए उनको मैं बता देता हूँ। सुपरस्टार संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS की बात कर रहा हूँ मैं। याद आया आपको जादू की जप्पी वाली फिल्म? और वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, पर भी बता देता हूँ कि फिल्म में मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना भाई, संजय दत्त के अलावा डॉक्टर सुमन उर्फ चिंकी उर्फ ग्रेसी सिंह, डॉक्टर अस्थाना उर्फ बोमन ईरानी और सर्किट उर्फ अरशद वारसी तो थे ही, वहीं बाबूजी सुनील दत्त और माँ रोहिणी अतंगड़ी ने भी गजब का किरदार निभाया है। वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो समझ लीजिएगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। फुल मसाला, फुल कॉमेडी, फुल टू एंटरटेनमेंट, फुल टू मस्ती है, पूरा पैसा वसूल है। और गाने, ओए ओए, गाने तो पूछे मत। अब्बास टायर वाला और राहत इंदौरी के लिरिक्स को संगीत दिया है हम सभी के अजीज अन्नू मलिक साहब ने। अब बताइए गाने बेहतरीन होंगे या नहीं? वेल, फिल्म में गाने कुल 6 हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको सिर्फ 1 या 2। कौन सा सुनाऊं? आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। भाई 2003-2004 से जुड़ी तो आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, तो शेयर कीजिए ना फेसबुक पेज पर आकर। इंतजार कर रहा हूँ मैं।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के साथ। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के सालों से। तो ये बताइए, शुरुआत कैसी रही? वो दोहा सुना है आपने सिंगापुर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। यहाँ बहुत ही फेमस और कॉमन दोहा है, हिंदी जिसने भी पढ़ी होगी उसको याद होगा। और जो ये कहता है वो एकदम सही है, कल किसने देगा भाई, मेरा मतलब कल हम इस दुनिया में हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते। खैर, ये बातें करने के पीछे ये मत समझिएगा कि समर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है या कोई नेगेटिविटी फैला रहा है। भैया यहाँ तो मस्ती होती है, मस्ती। दरअसल मैं तो आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका टाइटल कुछ इन्हीं लाइंस से मिलता जुलता है। मैं बात कर रहा हूँ 2003 में रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म कल हो न हो की। यंग डायरेक्टर निखिल आडवाणी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू था और बैनर धर्मा प्रोडक्शन का था। यश और करण जौहर साहब प्रोड्यूसर थे इसके और शाहरुख के साथ सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थी। अब इतना सब कुछ है तो और क्या चाहिए, एक फिल्म के लिए सभी बढ़िया इंग्रेडिएंट्स तो हैं। तो भाई हुआ भी यही, फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इतना जबरदस्त रिस्पांस कि ये 2003 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस फिल्म ने अवार्ड्स पर अवार्ड्स, अवार्ड्स पर अवार्ड्स, अवार्ड्स पर अवार्ड्स अपने नाम किए। वेल, करण जौहर ने अभी हाल ही में इस फिल्म को लेकर शॉकिंग खुलासा भी किया था। सुना आपने? नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूँ, तुम मुझसे सुन लीजिए। करण ने कहा था कि पहले वो इसमें करीना कपूर को लेना चाह रहे थे, पर करीना ने इतनी मोटी फीस मांग ली कि एट लास्ट उन्हें कम बजट वाली प्रीति जिंटा को कास्ट करना पड़ा। खैर, किस्मत किस्मत की बात है साहब। बाकी जहां तक सॉन्ग्स की बात है, सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। और हूँ ही क्यों ना भाई, जावेद अख्तर साहब ने बोल लिखे हों जिन गानों की और शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने जिन गानों को अपने संगीत में पिरोया हो, तो भैया वो तो होनी है हिट। माशाल्लाह सुपर हिट थे। कौन कौन से गाने सुनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस फिल्म में गाना था प्रेटी वुमन, तो जो ओरिजिनल हॉलीवुड का गाना है ना प्रेटी वुमन, उसको इस फिल्म में बाकायदा फीस देकर लिया गया था, खरीदा गया था। ये ऐसा शायद पहली बार हुआ था, इससे पहले अदरवाइज हम चुपचाप कॉपी कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं थे। अभी क्या कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज ना, तो सबको पता लग जाता है कहां पर क्या हो रहा है और तुरंत एक चिट्ठी आ जाती है बड़ी सी कॉपीराइट वायलेशन की, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इससे बढ़िया है कॉपी करने की परमिशन ही ले लो। इस फिल्म में शंकर एहसान लॉय ने बड़ा सेफ खेला और उन्होंने परमिशन ली। वेल, अब तो ऐसा करने लगे हैं बॉलीवुड के लोग, परमिशन ले लेते हैं। और हॉलीवुड वाले भी हमारे गानों को यूज करते हैं तो परमिशन लेते हैं भाई। और मैं भी आपकी परमिशन से ये गाने आपको सुनवा रहा हूँ कल हो ना हो से। कीप एंजॉयिंग यादों का कारवां समर के साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
6: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
5: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव है। ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो, और ये है यादों का कारवां जहां से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब अगली फिल्म की तरफ चलते हैं। भाई देखिए, हम तो क्या अपनी गाड़ी को रिवर्स में चलाते हैं, फ्लैशबैक में ले जाते हैं आपको, ताकि आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों की और उन गानों की याद एक बार फिर से ताजा हो जाए जिन पर कभी आप झूमा करते थे। बहरहाल चलिए, अब गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है तो इसे और पीछे करते हैं और आपको ले चलते हैं, मतलब 2003 में ही लेकर चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, और ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे। ये बताइए, कभी आपने एलियन को देखा है? वैसे मुझे मालूम है आपका आंसर ना ही होगा, बस मैं जरूर एलियन जैसा देखता हूँ। मुझे देखा ही कितने लोगों ने, लेकिन फिल्मों में तो आपने एलियन कई बार देखे होंगे, याद है आपको? वैसे क्या आप याद कर सकते हैं कि एलियंस और उनकी दुनिया को किसी बॉलीवुड फिल्म में सबसे खूबसूरती से कब दिखाया गया था? बताइए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, फिल्म थी कोई मिल गया, वही जादू वाली फिल्म। क्या कमाल की फिल्म थी, मतलब बच्चों की सी फिल्म है, लेकिन आज भी देखें तो बच्चा हो जाता दिल। दिल तो बच्चा है जी। पिताजी डायरेक्टर और बेटा एक्टर, राकेश रोशन की इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा के अलावा रेखा और खुद राकेश जी का भी किरदार था। वैसे रेखा को राकेश रोशन अपनी फिल्मों में लेते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो उनकी लकी चाम है। चाहे छोटा सा रोल दें, चाहे दीवार पर उनकी फोटो टंगी रहे, लेकिन वो होती है फिल्म में। फिल्म का प्लॉट सुनकर ऐसा नहीं लगता कि फिल्म बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन फिल्म देखने लगते हैं तो बस देखते रहते हैं, देखते रह जाते हैं। अच्छा, ये फिल्म खाली एक ही फिल्म नहीं रही, बल्कि इसके दो सीक्वल अब तक तो बन चुके हैं, क्रिश और क्रिश पार्ट 3। तो एक तो क्रिश तो यहीं शूट हुई है सिंगापुर में, आपको मालूम ही है। तो ये उसकी पहली वाली फिल्म है कोई मिल गया। ये फिल्म कमाई करने में और अवार्ड्स जीतने में भी पीछे नहीं रही। और जहां तक गानों की बात है तो आपको बता देते हैं कि फिल्म में म्यूजिक राजेश रोशन जी का है। छोटे भाई हैं राकेश रोशन जी के, और ऋतिक के चाचा हैं राजेश रोशन, और पार्टनर हुआ करते हैं वो फिल्म क्राफ्ट कंपनी में। तो वो जब अपनी कला जानते हैं तो क्यों पैसा किसी और को दें, वो म्यूजिक दे दिया करते हैं अपनी फिल्मों में। और जब जब वो म्यूजिक देते हैं तो फिल्म में यूं तो एक जादू था, लेकिन उनका म्यूजिक भी जादू क्रिएट करता है, और वो जादू अब तक बरकरार है। तो फिर एक काम करते हैं, उनकी दोनों को सुन लेते हैं। अब लौट कर आइएगा आप, यादों का कारवां पर समर है आपके साथ सिंगापुर। सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए इन गानों को। इनसे जुड़ी कोई भी बातें, कोई भी यादें अगर आपको आ रही हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर।

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

सपोर्ट जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: ओ हेलो हेलो हेलो भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ। हाँ, सिंगापुर क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मैंने कहा था ना लौट कर आता हूँ, कहीं खो मत जाइएगा। अब मुझे पता है कि ये गाने ऐसे ही हैं, हम इनमें डूब से जाते हैं, इनमें खो जाते हैं। खैर अब वापस आप अटेंटिव मोड पर आ जाइए, मेरी बातें सुन लीजिए, सफर को आगे बढ़ाना है तो। सिंगापुर, अब हम बात करते हैं हमारी फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही लाइफस्टाइल के बारे में। आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, भागम भरी लाइफ में, हम कई बातों को इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर देते हैं? अब कोई ऐसा भी होता है जो उन्हें सब कुछ जानते बूझते भी इग्नोर करता है, और कोई न चाहते हुए भी जरूरी बातों को टाइम दे नहीं पाता है। वैसे समझ रहे ना मेरा इशारा किस तरफ है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, वो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। जिस किसी चीज पर भी उंगली रखी या किसी भी चीज के लिए हमने जिद की, वो हमें उनकी बदौलत मिलती रही। पर आज की हमारी लाइफ स्टाइल में कभी कभी ये पेरेंट्स अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। वेल, चलिए मैं पॉइंट पर आता हूँ। आप सोचेंगे कि आज यादों का कारवां में कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही टॉपिक पर बेस्ड रही ये 2003 में आई फिल्म बागबान। अब समझ में आया मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने देखी होगी अमिताभ बच्चन साहब और हेमा मालिनी जी की प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म। फुल इमोशनल ड्रामा है ये, और मेरे ख्याल से काफी हद तक सच्चाई भी है बड़े शहरों की। और जिसने भी ये फिल्म देखी होगी तो पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। मेरे आए थे, मालूम है कब? जब वो सीन होता है ना करवा चौथ के बाद, फोन करते हैं दोनों एक दूसरे को। बच्चन साहब तो कभी भी रुला लेते हैं। तो बागवां, इसका टॉपिक, इसके किरदार, स्टोरी, ओपनिंग, एंडिंग, क्लाइमेक्स, सब कुछ परफेक्ट था। 1983 की नास्तिक फिल्म के 20 साल के बाद बिग बी और ड्रीम गर्ल की ये जोड़ी पर्दे पर साथ आई और लोगों ने खूब पसंद किया इन्हें। फिल्म के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा साहब, और उनके पास ये स्टोरी का प्लान और भी पहले का था। बता दें कि पहले वो इसे मिड 80s में बनाने वाले थे, जिसमें वो दिलीप कुमार साहब और राखी जी को कास्ट करना चाहते थे। खैर ये बात अलग है कि बाद में रवि चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को पूरा किया। और जब इस फिल्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फिल्म बच्चन साहब और हिमा जी के लिए ही लिखी गई थी। और एक बात और जो शायद आपको पता नहीं है, वो ये कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो बच्चन साहब की स्पीच वाला पार्ट था ना, वो एक बार में नहीं बल्कि 36 बार रीराइट हुआ था। इस बात का खुलासा खुद स्क्रिप्ट राइटर अचला नागर ने किया। वेल, जहां तक बात गानों की है, जैसी बेहतरीन फिल्म वैसे ही बेहतरीन इसके गाने भी हैं। समीर साहब के लिरिक्स को म्यूजिक दिया आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह ने। इस फिल्म एल्बम के साउंड ट्रैक के 14 लाख यूनिट्स बिक गए थे, जो साल के सबसे ज्यादा सफल साउंड ट्रैक्स में से एक था। अब आप कह रहे होंगे यार गाना कब सुनवाओगे, चलिए कौन सा सुनवाऊं, चली चली या फिर बागवा टाइटल ट्रैक या फिर होली वाला? कंप्यूटर जी, हेल्प प्लीज।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: वेलकम बैक सिंगापुर। तो जी, जो भी इस वक्त खूबसूरत से गानों में खो गए हैं, उन्हें एक बार फिर से उठाते हुए, जगाते हुए याद दिला दें कि आप इस समय हैं समर के दरबार में, जहां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं 2003 और 2004 के सुपर डुपर बॉलीवुड फिल्मों के सुपर डुपर सॉन्ग्स। वैसे सिंगापुर एक बात तो है, मेरा मतलब जो सादगी होती है ना, वो अक्सर वो काम कर जाती है जो शोशाबाजी भी नहीं करवाती है। दरअसल ये जो फैक्टर है ना, वो कई बार किसी से मोहब्बत करने में भी चल पड़ता है। अब हमारे राधे भैया को ले लो। अरे हाँ भाई, फिल्म तेरे नाम के राधे भैया देखा नहीं? कैसे एक आवारा सा, लड़ाकू सा, हर समय झगड़े फसाद करने वाला राधे भैया एक सीधी साधी भोली भाली निर्जला नाम की लड़की पर लट्टू हो जाता है, मेरा मतलब फिदा हो जाता है। फिर तो भाई वो मोहब्बत की आगोश में ऐसा चला जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वाकई क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट पर बनी थी ये फिल्म तेरे नाम। सलमान खान और भूमिका चावला की बेहतरीन अदाकारी को सतीश कौशिक के डायरेक्शन ने जबरदस्त तड़का लगा डाला था। 15 साल बीत गए फिल्म को रिलीज हुए, भले ही ये बड़े पर्दे पर नहीं है, लेकिन जब भी कभी टेलीविजन पर इसे देखते ना, तो न जाने क्यों एक नयापन सा लगता है इसमें। ये 2003 में सल्लू भाई की इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, कई सारे अवार्ड जीते और बहुत सारी कमाई की। तेरे नाम के जबरदस्त रिस्पॉन्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके फैंस जो हैं, वो अब भी सतीश कौशिक से फिल्म का सीक्वल लाने के लिए मांग करते हैं। पर जी, वो कहते ना, ओल्ड इज गोल्ड, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। खैर बात तो सही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भी ओरिजिनल नहीं थी फिल्म, एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, लेकिन हिंदी में ऐसी बनाई कि लोग देखते रह गए। बहरहाल बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो इस फिल्म का साउंडट्रैक भी उस साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्स में रहा। समीर साहब के बोलों को म्यूजिक मिला हिमेश रेशमिया का। वैसे कुल 13 गाने फिल्म में, और इन सभी गानों को आपस में शेयर किया है 2 खूबसूरत सी आवाजों ने, जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने। सभी गाने एक से बढ़कर एक लाजवाब हैं, पर वही बात, कौन सा गाना सुनवाऊं? कंप्यूटर जी, सुनवा दीजिए कोई भी 2 रसगुल्ले से मीठे गाने। और आप रेडियो मसी 24/7 लाइव पर बने रहिए समर के साथ।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Singapore, prepare for impact.
8: 3, 2, 1.
9: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
10: Welcome back, Singapore. Radio Musty 24/7 Live par main hoon Samar. Yaadon ka karwaan ke saath. आज हमारा कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के साल से। बचपन में पेरेंट्स सभी को सही सलाह देते हैं, पढ़ाई कर लो, टीवी ज्यादा मत देखो, खेलने का वक्त तय करो, वक्त कीमती है बर्बाद मत करो, फलाना ढिनका, मतलब बहुत सारे लेक्चर मिलते मिलते हैं। और दोस्तों, जिस भी किसी ने उस बचपन के समय में अपने पेरेंट्स की बात को सीरियसली ले लिया, वो आज टॉप जगहों पर बैठे हुए हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। और जिन्होंने पेरेंट्स की बातों को दरकिनार या नजरअंदाज किया, वो रह गए। मेरे भी पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटा, एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाकर चलो, उसके बगैर सक्सेस पाना मुश्किल है। खैर, चलिए अभी के लिए पेरेंट्स और रियलिटी वाले लक्ष्य को रखते हैं एक तरफ और बात कर लेते हैं रियल लाइफ यानी कि बॉलीवुड के लक्ष्य की। जी हाँ, 2004 में आई ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था। वैसे कमी फिल्में होती हैं जो हमारी और आपकी लाइफ में इतना गहरा असर छोड़ जाती हैं कि वो एक दिशा दे देती हैं आपको कुछ कर गुजरने के लिए। ऐसी ही फिल्मों में से एक है ये फिल्म। हिंदुस्तान सेना की 99 में करगिल फतेह मिशन की कामयाबी को एक शख्स की जिंदगी से ऐसा जोड़ा गया कि वो हर किसी को भाग गया। फिल्म देखने के बाद न जाने कितने ही यंगस्टर्स को प्रेरणा मिली, नया जोश मिला जिंदगी में एक लक्ष्य बनाने का और उसे अचीव करने का। वैसे फिल्म में ऋतिक के अलावा रिपोर्टर बनी प्रीति जिंटा, कर्नल बने बिग बी अमिताभ बच्चन साहब और लगभग सभी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। वैसे मानना होगा फरहान अख्तर को, पहले तो दिल चाहता है कि साथ करियर की धमाकेदार शुरुआत की और दूसरी फिल्म ये बनाई थी लक्ष्य। डायरेक्टर थे इस फिल्म के, स्टोरी लिखी थी उनके पिताजी ने, जावेद अख्तर साहब ने। ओपनिंग के साथ ही लक्ष्य को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और गाने और म्यूजिक की तो पूछे ही मत आप बात। टाइटल ट्रैक तो इतना हिट है, मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने ये जाना है, कितना असरदार है। और कंधों से मिलते हैं कंधे, कमाल, रोंगटे खड़े कर देता है। और वो गाना, मैं ऐसा क्यों हूं, मतलब सभी गाने हर तरह के फ्लेवर के थे, रोमांटिक भी थे, मोटिवेशनल भी थे, हर तरह का गाना था। मैं ऐसा क्यों हूं, इस गाने को कोरियोग्राफ किया था फरहान अख्तर ने। लोगों को लगता है प्रभुदेवा ने किया होगा, लेकिन फरहान अख्तर खुद एक बहुत ही कमाल के डांसर हैं, जबरदस्त। तो साहब, एक काम करते हैं कि लक्ष्य के कंप्यूटर जी, दो गाने सुनवा दीजिए और आप इन गानों के साथ अपनी यादों को हमसे ताजा करते रहिए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं हूं समर आपके साथ। यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं, लौटता हूं इन गानों के बाद।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं समर आपके साथ। आज हमारा यादों का कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के सालों से और अभी हम 2004 में आ गए। इसी साल एक फिल्म आई थी वीर जारा। वैसे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन पर, बॉर्डर पर, टेररिज्म जैसे कॉन्सेप्ट पर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में अब तक बन चुकी हैं और अभी तक बन भी रही हैं। इनमें से कई सुपर डुपर हिट हो गई हैं तो कईयों को दर्शकों ने नापसंद कर दिया। पर दो दुश्मन देशों के बीच प्यार और मोहब्बत के कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। और सोचिए इस कॉन्सेप्ट को दोनों मुल्कों के लोगों का जबरदस्त पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले तो क्या कहेंगे आप। जी हाँ, ऐसी फिल्म थी वीर जारा, 2004 में आई थी। लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सरहद पार दो प्रेमियों के बीच की इस कहानी को फिल्म की शक्ल दी और शाहरुख खान इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह के रोल में, तो वहीं हमारी डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने निभाया है पाकिस्तान की जारा हयात खान का किरदार। वीर और जारा की ये प्रेम कहानी इतनी जबरदस्त हिट हुई कि उस साल हुए लगभग हर अवार्ड पर इसी का कब्जा रहा। और सिंगापुर वीर जारा सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं चली बल्कि इसको यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। और वैसे अगर कोई फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और पेरिस के सबसे बड़े द ग्रैंड रेक्स थिएटर पर दिखाई गई हो तो सोच सकते हैं कि किस भव्यता के साथ इसे इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया गया। और विदेशों के थिएटर्स पर तो शाहरुख खान और प्रीति के चाहने वालों का हुजूम उमड़ने की भी खबरें थी। और जहां तक सॉन्ग्स की बात है, म्यूजिक की बात है, तो इसमें भी लाजवाब गानों ने हर किसी का दिल जीत लिया। कुल 11 गानों में से 9 गानों को आवाज मिली हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला लिविंग लेजेंड लता जी की। यहाँ गानों में उनका साथ निभाया उदित नारायण जी ने, रूप कुमार राठौड़ जी ने और सोनू निगम ने। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब के खजाने से निकाला गया। उनके बेटे ने रीअरेंज किया वो म्यूजिक और ये धुनें वो थीं जो मदन मोहन साहब तब बना गए थे जब वो जिंदा थे। जावेद अख्तर साहब ने गानों के बोल लिखे और क्या कमाल के बोल लिखे। और एक गाना गुरदास मान की आवाज में भी है, ऐसा देश है मेरा। तो चलिए अभी मूड को रिफ्रेश कर लेते हैं वीर जारा के इन खूबसूरत गानों के साथ। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ।

सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: वही फिल्म जिसके बाद खास तौर से हमारे यंगस्टर्स को स्पोर्ट बाइक्स, उससे रफ्तार पकड़ने और तो और स्टंट्स करने का जबरदस्त शौक चढ़ गया। इंडिया में तो यही हुआ था, पर कुछ भी कहिए, इस धूम ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा दी थी। अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा, ईशा देओल और रिमी सेन इस फिल्म में थे। 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई। एक एक्शन थ्रिलर थी ये और उस साल की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक थी। फिल्म बाइकर्स गैंग और पुलिस के इर्द गिर्द घूमते कॉन्सेप्ट पर बनी थी और इसे काफी पसंद किया गया था। यही वजह रही कि इसका एक नहीं बल्कि दो सीक्वल तब तक आ चुके हैं। 2 साल बाद धूम 2 आई और उसके 7 साल बाद 2013 में धूम 3 रिलीज हुई। लेकिन वही बात, ओल्ड इज गोल्ड और ओरिजिनल इज ओरिजिनल, यही बात धूम के साथ भी फिट बैठती है। जो बात 2004 वाली पहली धूम की थी वो बाकी की धूम में कुछ मतलब बन नहीं पाई। वेल, धूम के सॉन्ग्स ने भी जबरदस्त धूम मचाई। टाइटल ट्रैक तो बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। अभी भी जब कभी ये धूम वर्ड आता है तो सभी की जुबान से वही गाना बाहर आ जाता है, धूम धूम धूम मचा ले टना ले। और दोस्तों, धूम के गानों की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का जो क्रेडिट है वो प्रीतम और सलीम की जोड़ी को ही जाता है। सुनिधि चौहान की आवाज में गाए गए धूम मचा ले टाइटल ट्रैक के अलावा दिलबरा है दिलबरा, शिकदुम शिकदुम या फिर सलामे सलामे, हर गाना बेहतरीन है। और टाइटल ट्रैक टाटा यंग ने भी गाया है, धूम धूम। तो चलिए, अब कौन सा गाना सुनाए, बताइए बताइए। कंप्यूटर जी प्लीज हेल्प कीजिए। कंप्यूटर की हेल्प से हम इन गानों को सुनते हैं। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज, आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, समर के साथ हैं आप रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। समर के साथ एक बात की तो गारंटी रहती है और वो है फुल एंटरटेनमेंट की। जी हाँ, समर यादों का कारवां में आपके लिए ऐसे गाने चुनकर लाता है जो कभी ना तो आउटडेटेड हुए हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। क्यों बताइए, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ मैं हूं ना। मतलब जब जिक्र हो चला है मैं हूं ना का, जब बात चल रही है 2003 और 2004 की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स की और उनके गानों की, तो शाहरुख खान साहब की मैं हूं ना फिल्म पर भी थोड़ी नजरें इनायत कर लेते हैं। जी हाँ, 2004 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा भरपूर इस फिल्म में शाहरुख के साथ जायद खान, सुनील शेट्टी, अमृता राव और सुष्मिता सेन लीड रोल्स में थे और इसे डायरेक्ट किया कोरियोग्राफर के तौर पर झंडे गाड़ चुकी फराह खान ने। फराह की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। फराह और उनकी इस फिल्म को भी इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि इसकी भी सीक्वल बनाने की डिमांड आने लगी, पर फराह ने हर बार साफ कर दिया कि भैया उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। वैसे फराह और मेरी सोच एक जैसी है, जो पहली होती है द ओल्ड इज गोल्ड। वेल, मैं हूं ना के गाने भी लाजवाब हैं, कोई भी उठाकर देख सकते हैं आप। टाइटल ट्रैक मैं हूं ना, या तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, या फिर तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, और वो गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी। दोस्तों, फिल्म को चार चांद लगाने वाले कुल 9 गानों में से एक को चुनकर यहाँ पर पेश करना बड़ा मुश्किल है, तो कंप्यूटर जी 2 गाने सुनवा दीजिए प्लीज। प्लीज आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। कंप्यूटर मान गए, 2 गाने सुनिए आप मैं हूं ना के। मैं लौट कर आता हूँ, मैं यही हूँ ना। आ रहा हूँ, आप भी यही ना। हाँ, वापस आइए, सुनते रहिए यादों का कारवां सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो पर, जिसका नाम क्या है, ये मस्ती। जोश में रहिए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

सिंगापुर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां समर के साथ। मैं आज आपको ले चला हूँ 2003-2004 के सफर पर। 2003 और 2004 की बेहतरीन फिल्मों और उनके सॉन्ग्स को आज हम रिवाइव कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं और आपके साथ क्या कहूँ मैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब जाने का वक्त भी आ गया है। कौन कहता है कि गाने पुराने हो गए, ये गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते। बहरहाल बढ़ाते हैं अपने कारवां को और एक और फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। 2004 में आई फिल्म मर्डर की बात करते हैं अब। जी हाँ, वही महेश भट्ट और मुकेश भट्ट वाली फिल्म, बोल्ड कॉन्सेप्ट वाली फिल्म मर्डर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुराग बासु ने। मियां बीवी और वो के कॉन्सेप्ट पर बनी ये थ्रिलर लव स्टोरी भी उस साल के सुपरहिट फिल्मों की फेहरिस्त में शुमार हो गई थी। और गाने तो क्या कमाल थे भैया। और इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के लिए तो ये फिल्म लॉटरी साबित हुई। इमरान और मल्लिका दोनों के करियर की ये दूसरी फिल्म थी और इमरान को फुटपाथ के बाद और मल्लिका को ख्वाहिश के बाद इसमें काम करने का मौका मिला। और जहां तक कॉन्सेप्ट और इसकी बोल्ड सीन्स की बात है तो ऑब्वियसली इस फिल्म की वो जरूरत थी, डिमांड थी, उसे देखते हुए इसे ए सर्टिफिकेट मिला। और इसके बाद 2011 में मर्डर 2 और 2013 में मर्डर 3 के सीक्वल भी रिलीज हुए। गाने भी इनके धमाकेदार रहे, लेकिन इस फिल्म की बात ही कुछ और थी। सईद कादरी और राहत इंदौरी के लिरिक्स को संगीत दिया नन अदर देन हरदिल अजीज अनु मलिक साहब ने। कमाल के गाने थे भैया मर्डर के, तो मर्डर के गाने सुनवा देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर जी एक नहीं, टाइम है अभी, दो सुना दीजिए। भीगे होंठ तेरे और कहो ना कहो, इन गानों के साथ आज के इस कारवां को मैं यहाँ थाम लूंगा और एक और बेहतरीन साल की सैर पर आपको ले जाने के वादे के साथ मैं भी आपसे विदा ले लूंगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। लेकिन जाते जाते कहूंगा क्या कि रखिएगा आप अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के होठों पर मुस्कुराहट बनकर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आपको लोग दुआओं में याद करें। मुझे भी याद कर लीजिएगा। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ यहीं पर रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव। सुनते रहिए, बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

This is heavy.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें।

0: होती रहती है।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: सस्वीकार गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: बचोगे तो बचोगे।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
4: I love you, रचना।
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
5: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
6: तुमको लेकर
5: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
7: मुझे चांद पहले चलो।
5: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
7: रात अकेली है।
8: जोश में रहो, जोश में रहो।
9: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
10: राइट।
9: कूल। वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
10: Nadi
9: Jamesh Nadi Jamesh, ah, it's so sexy.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
5: जोश में रहो।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
7: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

ऐसे ही हूँ मैं, वाइल्ड मेरी इमेजिनेशन, अब हो रही है वो पागल हो रही है, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, बरसेगा बादल, बरसेगा बादल, वो भी एक अरसे से प्यासी, मैं भी एक अरसे से पागल।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh Mehra.
5: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: Check it

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: ओह

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: और आ गया वो टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन जब हम लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हैं। गुड इवनिंग। जी हाँ, फ्राइडे है, शाम है, जैसे मंडे की शुरुआत सुबह 7 बजे इस अमेजिंग सी आवाज के साथ में होती है रेडियो मस्ती 24/7 पर। वैसे ही फ्राइडे जो कि हमारे हफ्ते का लास्ट डे होता है और लास्ट लाइव शो होता है, तो भाई उसकी भी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज से होती है। हैरानी की बात यह है कि मंडे सुबह भी मैं डांट खाती हूँ और फ्राइडे शाम भी आप लोगों से, आधे ज्यादा लोगों से डांट खा के जाती हूँ, बट वेल दैट इज एग्जैक्टली जहां हमारा और आपका प्यार बना रहता है। अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू मस्ती टॉप चार्ट्स। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। बिल्कुल ज्वाइन तो आप कर ही चुके हैं, मुझे पता है, और अब बस 5:01 ऊपर नीचे ऐसा ही हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आज क्या मस्ती होने वाली है। सो मस्ती डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि मस्ती की जो सबसे बड़ी मस्ती खोर है वो तो यहाँ पर एट योर सर्विस है। बातें करेंगे बहुत सारी, ढेर सारी, ऑफ कोर्स गाने चलाएंगे टॉप 20 और आज देखेंगे कि टॉप 3-4 गानों में क्या क्या लड़ाइयां होने वाली हैं। वेल, बढ़िया बात तो यह है कि आपके बड़े सारे जवाब हमें आए हैं हमारे इंस्टाग्राम से, जहां पर हमने पूछा गाना नंबर 1 कौन सा होना चाहिए इस बार का। तो वेल, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया है तो वेल टू लेट एक्चुअली, पर फिर भी जाके ट्राई योर लक, हो सकता है कि फैसला बदल जाए। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 is time for gana number 20 aur gana number 20 ki kismat khair main kya hi bataun। बिल्कुल, उसने भी कभी सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। इस गाने का नाम है सोचा ना था। मेरी दुनिया बन जाए। एंड डोंट आस्क मी क्या हुआ है इस गाने के साथ, यू नो 2 हफ्ते पहले ये गाना पहुंच गया था नंबर 1 पर। जी हाँ, इट्स कॉल्ड सोचा ना था। और फिर पिछले हफ्ते 10 पायदान जिसे कहते हैं गिरा और पहुंच गया गाना नंबर 10 पर। और आज के दिन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, दिस इज गाना नंबर 20। आप में से बहुत से लोगों ने शिकायतें लिखी हमको, और मेरे तक ही नहीं, शिकायतें तो पहुंची मेरी पूरी टीम तक कि रेणुका ने क्या कर दिया, ये कौन सा गाना नंबर 1 पे कर दिया। भाई उसके बाद जो मेरी लगी तो मैंने कहा इसको तो धीरे धीरे खिसकाओ। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और वापस आते हैं ये गाना सुन के और बातें करेंगे बहुत सारी, ढेर सारी मस्ती करेंगे ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे। इट्स रेणुका विद यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7, इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स।
4: Trending song number 20.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: चोर बाजारी, जी हाँ बिल्कुल पक्की बात है कि चोर बाजारी है यहाँ पर। रेडियो मस्ती 24/7 पर बात कर रही हूँ मैं बॉलीवुड की, क्योंकि ये है बॉलीवुड का ही वीकली काउंटडाउन एंड इट्स कॉल्ड मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20 पर आपका स्वागत करने के लिए एक ही है। हाँ मैं कभी कभी रोकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि और लोग भी रुक जाए मेरे साथ शाम को, पर कोई रुकता नहीं है। नहीं यार क्या करें। खैर बात कर रहे थे हम चोर बाजारी की, तो चोर बाजारी के चलते मुझे एक बात याद आई कि बॉलीवुड में कुछ चीजें कभी लेट नहीं होती। मतलब या तो एयरपोर्ट लुक्स की बात कर लीजिए या फिर उन पर बने मीम्स की बात कर लीजिए। कभी कभी तो एक्टर्स जो है ना वो फ्लाइट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। कभी लगता है कि सूटकेस ने एक्टर को कैरी किया हुआ है। और फिर सोशल मीडिया के डिटेक्टिव्स जो शुरू होते हैं पूछिए मत। आप कहते हैं ये जैकेट जो उसने पहना है ना 3 लाख का है। अरे भाई छोड़ ना यार, हम तो 3-3 साल तक एक ही जैकेट पहनते हैं, एंड हु केयर्स फ्रैंकली। बात करते हैं हम एक तरफ सस्टेनेबिलिटी की और दूसरी तरफ हम मीडिया को बुला बुला के कहते हैं अरे यार ये बंदा एयरपोर्ट पे जा रहा है, जरा इकट्ठा तो हो जाओ, उसके एयरपोर्ट लुक को तो वायरल कर दो। Well, that is गाना नंबर 19। अगर आपको याद है तो ये पिछले हफ्ते नंबर 9 पर था और एकदम से लुढ़क के पहुंचा है नंबर 19 पर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट गाना आफ्टर दिस? वाओ, ये था 19 पर और ये पहुंचा है 18 पर आज के दिन में। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी एज वी कॉल रेडियो मस्ती 24/7 पर बातें करेंगे आउटफिट्स की, बातें करेंगे फैशन की, बातें करेंगे दाल में कुछ काला होने की इन बॉलीवुड। बट दिस फॉर नाउ इज द बैक टू बैक 19 और 18। सुन के आते हैं वापस विद रेणुका, इट इज मस्ती टॉप 20।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।

0: से ज्यादा तो फिल्म की कंट्रोवर्सीज की बातें हो रही हैं। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर क्या नाम है, है जवानी तो इश्क होना है, मतलब व्हाट इज दिस। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू, एंड ऑफ कोर्स चल रही है हमारी फ्राइडे शाम की बातें, और फ्राइडे शाम को हम करते हैं ऐसी ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप से भरी हुई होती हैं। दैट्स द वे वी रियली वाइंड अप फॉर द वीक, राइट? बट यू नो व्हाट, आई गॉट टेल यू समथिंग वेरी वेरी वेरी एक्साइटिंग। इट इज अबाउट द वन एंड ओनली, जी हाँ, द लायन सिटी चैलेंज। आपने सुना है या नहीं?
1: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
2: एक्साइटेड।
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.
0: जी बिल्कुल, मैं बात कर रही थी द लायन सिटी चैलेंज की। आप जानते हैं कि सिंगापुर में रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती मीडिया नेटवर्क जब भी कुछ लाता है तो वो कुछ अलग होता है, कमाल का होता है। एंड राइट नाउ हम ढूंढ रहे हैं हमारे खास ऑडियंस जो भी अलग हैं और कमाल के हैं। जी हाँ बिल्कुल, बात कर रही हूँ मैं आपकी। आपको पार्टिसिपेट करना है इस पूरे के पूरे गेम शो में। कम ऑन गाइस, इट्स गोना बी फन, राइट? सो ये दो फेजेस में है। पहले फेज में आप हमें एक व्हाट्सएप भेजेंगे जिसमें आप लिखेंगे लायन, दहाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना। और उसके बाद हम आपको दो सवाल भेजेंगे, ठीक है? दो सवाल जब हम आपको भेजेंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। जैसे ही आपने सही जवाब दिए, हम तक पहुंचाए, तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगले पड़ाव के लिए, विच इज पार्ट टू। एंड पार्ट टू इज समथिंग लाइक अ गेम शो विच इज गोना हैपन इन द स्टूडियोज ऑफ रेडियो मस्ती 24/7। वहां पर आप आके बैठेंगे, एक होस्ट होगा, साथ में एक हॉट सीट होगी, और कुछ गप्पे शप्पे होंगी, बीच में कुछ सवाल होंगे, और बस मस्तियां होंगी। ऑफकोर्स यू विल टेक होम सम कैश एंड सम प्राइजेस। सो चलिए चलिए रेडियो मस्ती 24/7 पर पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ जिंदगी में कुछ रंग लाओ यार। बड़े बड़े बोरिंग टाइप हो गए हो आजकल तुम, है? चलो अगला गाना कौन सा है? नंबर 17। इसको मैंने रेणुका से भी हटा दिया और मैंने कहा है रुचिका, ओ माय डार्लिंग। गुड इवनिंग एवरीवन।
4: इट्स टाइम फॉर
5: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: 17 था और 17 पर ही इस हफ्ते भी yes, you just heard the first track from Dhurandhar playing on Musti Top Charts for this week. A very good evening and welcome once again. This is Radio Musti 24/7 और मैं रेणुका.
3: Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
4: Renuka!
2: जी बिल्कुल. एंड लाइक आई सेड, आजकल मैंने इसको बदल के अपनी फेवरेट बहुत ही प्यारी सी लिसनर के नाम कर दिया है, रुचिका. ओ माय डार्लिंग. अब क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं. 17 था, 17 है. जी हाँ, दैट इज मोनिका, ओ माय डार्लिंग, रन डाउन द सिटी, धुरंधर. लेकिन अगला गाना विच इज अ नंबर 16 इज एक्चुअली फ्रॉम अ फिल्म विच इज डूइंग फेयरली अमेजिंग एट द बॉक्स ऑफिस. जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं बॉबी देओल की और साथ ही मैं बंदर की. किसी ने सोचा नहीं था, एक्चुअली शायद उन्होंने खुद नहीं सोचा था. मुझे तो लग रहा था कि ये बंदा डेफिनेटली आएगा तो अच्छा ही काम करेगा और फिल्म भी अच्छा ही करेगी. वेल, क्यों मजा आ रहा है, दैट्स द नेम ऑफ द नेक्स्ट ट्रैक. और मुझे बॉबी देओल से याद आया हाल ही में एक इंटरव्यू, जो कि पूजा भट्ट अपना इंटरव्यू दे रही थी. जी हाँ, और उसमें उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, अपार्ट फ्रॉम यू नो थिंग्स लाइक उनके डैडी के रेगुलर अफेयर्स महेश भट्ट के, फ्रॉम यू नो फ्रॉम द टाइम दैट देर वॉज सोनी राजदान इन हिज लाइफ एंड देन देर वॉज प्रवीण बाबी इन हिज लाइफ एंड वी हर्ड सो मेनी कहानीज राइट एंड येट हिज अमेजिंग रिलेशनशिप जो कि आज तक चला आ रहा है उनकी अपनी पहली पत्नी के साथ में, विच इज पूजा भट्ट्स मदर. बट वेल, द पॉइंट वॉज अबाउट बॉबी देओल एंड अबाउट पूजा भट्ट एंड द वे विद वेरी वेरी मैच्योरिटी, आई वुड से विद अ गुड लेवल ऑफ मैच्योरिटी, द वे पूजा भट्ट रिप्लाइड कि हाँ, मेरा बहुत बढ़िया टाइम था, इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ जो मैंने बॉबी देओल के साथ में बिताया. लेकिन आज के दिन में व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज वी बोथ जस्ट मूव्ड ऑन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और वो कितना खुश है आज के दिन में अपनी फैमिली के साथ में, क्यों बातें करनी है वो सब. वेरी मैच्योर रिप्लाई इंडीड. चलिए उसी बात पर, ये अमेजिंग सा रेट्रो भी हो जाए, सुनते हैं बैक टू बैक गाना नंबर 16 एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय दिस वन कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 विद रेणुका. इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स.
0: Trending song number 16.

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: गॉसिप की बात करें तो हमसे भी कहीं आगे बढ़कर बॉलीवुड के लोग खुद गॉसिप मॉन्गर्स हैं, है ना कि नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 इट इज रेणुका विद यू। वेलकम वेलकम। फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। लाइन लिख के भेजा कि नहीं भेजा आपने? वेल, लाइन सिटी चैलेंज हमारा सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अमेजिंग सी जो एक गेम शो है जो आने ही वाला है बहुत ही जल्द आपके देखने के लिए। बी अ पार्ट ऑफ इट गाइस। Alright, I'm just going to talk about something very, very unique. हाँ, जब बॉलीवुड में कोई शादी अनाउंस होती है ना तो देश का GDP तो नहीं बढ़ता, वो तो बल्कि कम ही होता है, बिकॉज ये लोग मोस्टली जाके बाहर ही करते हैं शादियाँ, लेकिन इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट जरूर बढ़ जाती है। मतलब आप सोचो, एक फोटो आती है और पूरा इंटरनेट शर्लॉक होम्स बन जाता है। देखो रिंग का एंगल, देखो बैकग्राउंड में फूल, देखो ये कौन सी जगह है। अरे भाई, हम तो देखा जाए तो आप हैं, हम हैं, हम तो अपनी शादी की एल्बम इतनी ध्यान से नहीं देख पाए यार, जितने की मतलब सीरियसली इन लोगों की फोटोज देखनी पड़ती हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना नंबर 15। आठ से 15। कोई नहीं कह सकता कि हमारे इस शो में एक्साइटमेंट नहीं रहती है। 15 से 14। Pretty wavy sort of a gana, right? So these two ganas, जिसमें एक गिरा है बहुत सारा और दूसरा थोड़ा सा उठा है, और हम दोनों सुनेंगे back to back on Radio Masti 24/7. It is Masti Top Charts with Renuka. ये है गाना नंबर 15 और 14। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द इन दोनों गानों के उस पार on, of course, Masti Top Charts.
1: Trending song number 15.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: आइए आइए हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन एंड ओनली हु इज वेटिंग फॉर यू अक्रॉस दिस आवर एंड दैट इज रेनुका एंड दिस इज ऑफ कोर्स मसी टॉप चार्ट्स
2: दे आर फ्रेश दे आर हॉट
1: और यही फ्रेश हॉट स्पाइसी गानों के साथ में मैं और आप मिलते हैं हर फ्राइडे शाम 5 से 8 एंड इन केस यू आर लिसनिंग टू दिस शो ऑन संडे वेल लेट मी टेल यू आप ऑन कोर्स सुन रहे हैं मैसेजेस ना भेजें क्योंकि मैं इस टाइम ऑन ड्यूटी नहीं हूं बट फिर भी बीइंग 24/7 डेफिनेटली आपको जवाब कोई ना कोई तो दे ही देगा वेल लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट एल्स इज अमेजिंग ऑन दिस संडे वेल संडे मतलब कि 14 तारीख है ना और 14 तारीख मतलब कि दो ऐसी चीजें हैं जो कि अपना लास्ट डे मना रही हैं वन इज शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट का 25वां जो 25th ईयर है दैट दे आर सेलिब्रेटिंग इन रफल सिटी जहां वो इस टाइम पर हैं वो वाला प्रमोशन खत्म हो रहा है तो आप सोचिए जो 5 डिशेज उनकी सिग्नेचर डिशेज आपको इस टाइम $25 में मिल रही हैं उसके सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इसीलिए प्लीज संडे से पहले जाएं और लुत्फ उठाएं बिकॉज ये डिशेज फिर से जब अपनी नॉर्मल प्राइस पे चली जाएंगी तो आप बोलेंगे ओए यार रह गई सो शाही महारानी का खाना एनी डे एंड ऑफकोर्स द सेकेंड थिंग इज जोया लुकास का 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस ओ माई गॉड उसके भी 2 ही दिन रह गए हैं बॉस सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिस वीकेंड बिफोर संडे यू गाइज गो एंड ग्रैब बोथ दीज ऑफर्स जाके शॉपिंग करनी है और फिर जाके खाना खाना है डन आप नेक्स्ट इज दिस गाना जो कि 11 पे होता था और इस समय फिसल के 13 पर पहुंच चुका है वेल आई विल टेल यू मोर अबाउट रेस्टोरेंट्स में जब लोग जाते हैं तो क्या होता है बॉलीवुड में स्पेशली बट आफ्टर दिस ट्रैक राइट स्टे ट्यून्ड दिस इज रेडियो मसी 24/7 विद रेनुका
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 13

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: बॉलीवुड में ना हर फ्राइडे को सिर्फ मूवी रिलीज नहीं होती है, इमोशंस रिलीज होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स एंड मस्ती टॉप चार्ट्स में बॉलीवुड की फुल टू खबरें और गॉसिप। From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20. Talking about the movies, जी हाँ, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑफकोर्स उससे पहले थी पति पत्नी और वो दो। आपने इन दो में से कोई भी फिल्म देखी या नहीं देखी मुझे बताइएगा जरूर, बिकॉज आई एम रियली वेरी वेरी वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि यार आप लोग आजकल जाकर हॉल्स में मूवी देखते भी हैं, सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं, या यू हैव रियली गॉट एज लेजी एज आई हैव फ्रेंकली। क्योंकि OTT पर फिल्म आगे जाके आ ही जानी है, तो कौन सा हमें कोई धार पड़ी है जाके देखना। हाँ, लेकिन हमको कभी कभी अपने काम की वजह से जरूर देखनी पड़ती हैं फिल्में, और तब मुझे लगता है अरे यार सीरियसली, बड़े सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बम्स फ्लैट हो जाते हैं बैठ के 3 घंटे। पता नहीं हम लोग ने कैसे जिंदगी भर मतलब फिल्में हॉल में जाके देखी हैं, है ना। खैर तब ऑप्शन भी नहीं था। And that is Gaana Mubarak coming up on Radio Musti 24/7 followed by
3: Jinni soni lagdi hai mainu kise hor na lagge lagge।
2: Well, of course, the pehla gaana has gone from 14 to 12, and this one, this is called Dil Wale Chor, and this was on number 13 last week, aur ye upar uth ke apni zindagi mein 11 number par pahuncha hai, kya baat hai। I love the songs that go up the ladder every week। तो भाई आप बताइए कि ओपनिंग कितनी हुई, एडवांस बुकिंग क्या थी। भाई साहब सीधी सी बात है, हमें तो स्कूल में मैथ से

0: मतलब इतनी परेशानी होती थी, और आप लोग बॉक्स ऑफिस में इतनी पीएचडी कर चुके हैं उसके नंबर्स के साथ में, दैट समटाइम्स आई फील छोड़ना यार, मतलब सीरियसली हाउ डज इट मैटर यू, तुम्हारे घर पे आ रहे हैं वो पैसे, नहीं आ रहे ना, तुमने तो खर्चे ही हैं देखने के लिए. Radio Masti 24/7. Let's listen to the next two tracks and I'll be back with some more news and the कितने रह गए? ओहो, अभी तो 10 गाने रहते हैं, सुनते रहिए.
1: Trending song number 12.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
5: Trending song number 11.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: और कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना कितना बड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर वाकई फिल्म ऐसी हो जो कि आपको पता है कि आप जाएंगे तो शायद दोबारा जाना चाहेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट इज रिलीजिंग और ऑलरेडी रिलीज टुडे गाइस. रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम बैक टू मस्ती टॉप चार्ट्स. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20. मैं वापस आऊंगा. मत बोलोगे तू कब से आऊंगा कहने लग गया रेनुका. नहीं नहीं, मैं वापस आ गई. बात कर रही हूँ मैं इम्तियाज अली की फिल्म. जी हाँ, दैट इज वन फिल्म आई टेल यू गाइज आई हैव बीन really waiting for in a way. वो क्योंकि मुझे पता है इम्तियाज अली की फिल्म है तो waste of time नहीं होगा. AR रहमान का म्यूजिक है, obviously waste of time नहीं होगा. नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स हैं इसके अंदर, सो बिल्कुल भी waste of time नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ दोज वेरी यू नो टॉपिक्स विच इज वेरी पैशनेट. वी आर वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड दैट इज द पार्टीशन, है ना, 1947 की पार्टीशन और उससे रिलेटेड कहानियाँ. अब आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा लोग मतलब हैं नहीं जो हमको कहानी सुना पाए ऑफ द पार्टीशन. सो वट एवर हैपन्स इट्स रियली रियली रियली प्रेशियस. सो वेल, इम्तियाज अली की ये लेटेस्ट फिल्म विच इज कॉल्ड मैं वापस आऊंगा, इट इज अबाउट अ 95 ईयर ओल्ड मैन जो कि स्ट्रोक हो जाता है उनको और वो अपनी मेमोरी लूज करने लगते हैं. बट ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कहीं ना कहीं पीस नहीं मिल रहा है उनको, एंड देर इज समथिंग अनरिजॉल्व फ्रॉम द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो फाइनली कन्फ्रंट किया जाता है. उनके जो ग्रैंडसन है दैट इज वेदांग रैना, ही इज फ्लाइंग बैक फ्रॉम इंग्लैंड टू बी बाय हिज साइड. और उसके बाद ऑफकोर्स पिछली यादें याद आती हैं. दिलजीत दोसांझ को देखेंगे आप इस फिल्म में, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज डन एन अमेजिंग जॉब एज ऑलवेज. बट इस फिल्म को अगर और किसी के लिए नहीं तो नसीरुद्दीन शाह के लिए जाना बनता है. वेदांग रैना है, शर्वरी है, ऑफ कोर्स दे आर द बीटिंग हार्ट ऑफ द फ्लैशबैक्स, जैसे जैसे पुराने जमाने की बात होती है, एंड देयर इज अ लॉट मोर. बट फिलहाल के लिए उस फिल्म का गाना है जो नंबर 10 पर आपका इंतजार कर रहा है. well, ये थोड़ी सैड बात है कि ये गाना नंबर 8 पे था और इस हफ्ते नंबर 10 पर है. बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट दिस गन इज गोना मेक अ कमबैक डेफिनेटली वंस अगेन. जैसे फिल्म रिलीज होगी ये दोबारा से एक पटाखे की तरह आपकी कानों में गूंजेगा. गुड इवनिंग एंड अ स्मॉल ब्रेक हियर एंड आई विल बी बैक वेरी सून.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10.

0: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 62358840. Terms and conditions apply.
5: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
6: Check it out.
7: म्यूजिक डायरेक्टर्स, गाने और मतलब कुछ क्रिएटिविटी, इस समय आपको लग नहीं रहा कि बॉलीवुड में थोड़ी सी लैकिंग होती चली जा रही है? वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक.
8: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
7: Musti Top 20 पर मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारा जो अगला गाना है ना, वो भी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में ही है. आप जानते हैं कि ये जो फिल्म है हाल ही में रिलीज हुई है. जी हाँ, एक तरफ है जवानी तो इश्क होना है और एक तरफ है वेलकम टू द जंगल. अब मतलब वेलकम टू द जंगल ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी पुराने जमाने के गाने को ही दोबारा से रिलॉन्च करूंगा. गाना बुरा नहीं है वैसे, और क्या छलांग मार के सीधा हमारे नए शो के नंबर 9 पर पहुंचा है ये. जी हाँ बिल्कुल, दिस इज अ न्यू ट्रैक दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू राइट आफ्टर आई टेल यू अबाउट गवर्नर. आप जानते हैं दिस वन एक्टर, वेल दे यूज टू बी वन एक्टर कॉल्ड इरफान खान. जी हाँ, उनका जो गुजरना था, उनका जो हिज डेथ वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग एंड आई वुड से अ ह्यूज लॉस टू बॉलीवुड, राइट? आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री विद दैट. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत एंड अ लॉट अदर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट देर इज वन गाय हु आई नो आई कैन बेट ऑल माई मनी ऑन, ठीक है? और वो है मनोज बाजपेयी. लड़का कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंचा है यार जिंदगी में. आई हैपन टू मीट हिम एंड आई टेल यू ही इज वन हेल ऑफ अ ग्राउंडेड कैरेक्टर. मेहनत और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. मतलब मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि यार एक बात बताओ, आप जब भी किसी फिल्म में आते हो हमें सीधा बैठना क्यों पड़ता है उस फिल्म में? व्हाई कांट वी जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट? व्हाई कांट वी जस्ट से हाँ यार मूवी देख रहे हैं, थोड़ा सा अनवाइंड करते हैं? नहीं, मनोज बाजपेयी की फिल्म है तो सीधा ही बैठना पड़ेगा बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रेस होगा. एंड ही जस्ट लाफ्ड इट ऑफ. इट वॉज सो क्यूट द वे ही आंसर्ड. इफ यू वॉन्ट नो एग्जैक्टली वॉट ही आंसर्ड देन यू हैव टू गो टू आई यूट्यूब एंड चेक मेरा और मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू. जी हाँ, या फिर आप जाइए मस्ती AVI का बटन दबाइए हमारे ऐप पर, विच इज रेडियो मस्ती 24/7, और वहां से भी आपको मिल जाएगा फटाफट मनोज बाजपेयी और मेरा वो इंटरव्यू ऑन रेडियो मस्ती. गाइस, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर बिकॉज वापस आके मैं आपको गवर्नर के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, एंड यू शुड रियली गिव दैट अ लिसन. डोंट गो एनीवेयर.
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9.

0: पब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
5: द मेकर्स ऑफ गवर्नर, जी हाँ, उन्होंने अनाउंस करी एक स्पेशल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अहेड ऑफ द फिल्म्स रिलीज, और ये फिल्म भी आज ही रिलीज हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आज का दिन कितना मतलब रेड लेटर डे है बॉलीवुड के लिए कि क्या क्या फिल्में रिलीज हो रही हैं। नॉट बैड। इम्तियाज अली की अभी मैंने आपको बताया, मैं वापस आऊंगा, एंड ऑफकोर्स साथ ही में मनोज बाजपाई की फिल्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ 2026। अ वेरी गुड इवनिंग।
6: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
7: Renuka!
5: That is Renuka My Darling, लेकिन आज मैंने रुचिका My Darling को ये सारा कुछ डेडिकेट किया हुआ है। So well, the makers of Governor, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने खास प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करी है। जी हाँ, पहली 25,000 टिकटें, जी हाँ 25,000 टिकट्स, आपको पता है किस रेट पर बिकेंगी? 1990s के रेट पे। कैन यू बिलीव इट? इट इज लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज इट इज वेल, ये जो टिकट्स हैं, दे हैव सडनली बिकम द टॉकिंग पॉइंट। हर जगह पे लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म वाकई नॉस्टैल्जिया और मार्केटिंग का एक मिक्स बन चुकी है। वेल, द टीम बिहाइंड गवर्नर, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दे लुक्ड इनटू द फिल्म्स पीरियड सेटिंग। उन्होंने कहा यार स्टैंडर्ड प्रमोशंस क्या करेंगे, एक काम करते हैं ऑडियंसेस को बैक इन टाइम ले जाते हैं, ठीक है, 25,000 टिकटों को हम 1990s के रेट पर ऑफर करते हैं। सिंपल सा आइडिया है, लेकिन आज के दिन में मार्केटिंग की दुनिया में वेल बहुत बड़ा आइडिया है। वेल, दिस एम इज एक्चुअली टू रिक्रिएट द फीलिंग ऑफ द एरा जिसमें वो फिल्म बनी है। सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लेकिन जैसे आप अंदर आते हैं थिएटर में, तो ऐसा लगता है कि यार सडनली व्यूअर्स के बीच में एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा, विच इज सो ट्रू। वेल, द अनाउंसमेंट वॉज शेयर्ड ऑब्वियसली ऑन सोशल मीडिया, और हाल ही में इमीडिएटली एकदम फैल गए। सबने कहा चल यार टिकट सस्ती वाली लेकर आते हैं। नॉट बैड, बट ऑन रेडियो मसी गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट गाना दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग हियर इज गाना नंबर 8। हॉट शॉट लगती है तो ब्याह करवा दो, ये भी कोई रीजन हुआ, ये भी कोई लॉजिक हुआ? बट देन व्हाई एम आई लुकिंग फॉर लॉजिक इन अ हिंदी मूवी? रेडियो मसी 24/7 पर छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ आपको अगले घंटे। फिलहाल के लिए एक बढ़िया सा मैंने आपके लिए रेट्रो भी चलाया है, उफ, यू विल फॉल इन लव विद द गाना वंस अगेन। सुनते साथ साथ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द।
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Trending song number 8.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग चीज आर द कमबैक्स. आज फ्लॉप है तो कल टॉप है, आज ट्रोल है तो कल ट्रेंड है. इसीलिए बॉलीवुड और लाइफ दोनों एक जैसे हैं. इंटरवल के बाद कहानी कभी भी बदल सकती है और इसी बदलती कहानी में आपका स्वागत. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है हमारा मस्ती टॉप चार्ट. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on absolutely. आप join कर चुके हैं 5 बजे से हम सारे के सारे साथ में बातें कर रहे हैं और अब हम पहुंच गए अपने आखिरी घंटे में, जहां पर आने से पहले ही मैं भागने का प्लान बनाती हूँ और उसके लिए जिम्मेदार हैं आप बाय द वे, बिकॉज रियली स्पीकिंग मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर डांट खा के जाने का, क्योंकि हर किसी को सेटिस्फाई करना तो बहुत मुश्किल है जिंदगी में, राइट? यस और नो? रेडियो मस्ती 24/7 पर बताना चाहूंगी अगली हमारी खबर. ऑफकोर्स बिफोर आई प्ले गाना नंबर 7, और मैं आपको बताऊं कि ये जो गाना नंबर 7 है ना, बाय द वे ये वाला गाना 12 नंबर पे था पिछले हफ्ते. सो जब तक आप याद करते हैं मैं बता देती हूँ कि हमारे एक्टर, कॉमेडियन और फिल्म मेकर वीर दास जो हैं, उन्होंने अपना अगली फिल्म का, जी हाँ, अपना डायरेक्टोरियल वेंचर जो है, इट्स कॉल्ड 12 नंबर, उसका कास्ट अनवील किया है और उसमें आप देखने वाले हैं अरुणोदय सिंह को, अतुल कुलकर्णी को और श्रेया पिलगांवकर को, अमंग मेनी मेनी अदर्स. इट इज दैट अमेजिंग गाइस. और इसमें शीबा चड्ढा दिखेंगी, साथ ही में एहसास चन्ना, निहारिका, लयरा दत्त एंड सुहेल नैयर, अपार्ट फ्रॉम पूजा स्वरूप एंड नवीन कौशिक. अब वीरदास ने क्या कहा, भाई ये प्रोजेक्ट बड़ा एक्साइटिंग है. वैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले होते हैं ये यही बात बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि बड़े सारे ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो हैं, जिनके काम को मैंने बड़े सारे सालों तक निहारा है, वो सब इस फिल्म में होने वाले हैं. देयर फॉर द एनर्जी, द इंटेलिजेंस एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अमेजिंग. इट्स एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, सो दैट गॉट मी गोइंग. साइकोलॉजिकल हॉरर, आई लव देम. That is the gun number 7 I was talking about. जी बिल्कुल, ये था 12 नंबर पर और इस हफ्ते पहुंच चुका है नंबर 7 पर. वेल, आप लोगों ने पसंद किया है इसको, मैंने कुछ नहीं किया. रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कमिंग बैक राइट बैक हियर, सेम प्लेस सेम जगह सेम सेम सेम एवरीथिंग. 6 गाने बताने के लिए तैयार हैं.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song. Number 7.

0: अब खुदा तो क्या ही जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगले 6 गाने कौन से होने वाले हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका स्वागत एक बार और। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: सुबह के 4 बजे तक कोई इंसान कैसे काम कर सकता है, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में 50-50 साल जहां पर बिता चुका हो ऑलरेडी एंड अभी फिलहाल 83 का हो। सिर्फ एक आदमी कर सकता है, एंड दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली एन इंस्पिरेशन गाइस। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी नजरें चाहे जितने गलत इंसानों के लिए गिरी हूँ इन द पास्ट, जैसे कि आमिर खान, लेकिन एक इंसान जिसको मैंने बचपन से पसंद किया है वो है अमिताभ बच्चन। आई टेल यू, एंड अमिताभ बच्चन मतलब ऐसा नाम कि मतलब तू अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट जस्ट हेल्ड a very different level, right? Well, megastar Amitabh Bachchan is samay 83 and he has given a glimpse of his relentless work ethic. Matlab aap sochiye, subah 4 baje tak kaam karte hain yaar before getting back on his feet for another day on the set. Aap soch sakte hain ki kafi concerns hue unke health ke amid obviously Kalki 2898 AD part 2 jo shoot ho raha hai. Well, what's happening is that extraordinary apni dedication inhone dikhai hui hai, and once again inhone ye kaha ki bhaiya aisa hai 1 baje raat ke dopahar ke wo Saturday ko ek post dale unhone aur kaha ki abhi bhi uthau subah 4 baje tak kaam kar raha tha aur ab I'm all set, जस्ट बी हाइड्रेटेड एंड बड़ी गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, मतलब उस तरह की बातें। साथ ही में ऑफकोर्स ही रोट अ वेरी स्वीट मैसेज फॉर आलिया भट्ट, सेड माय आलिया ऑल द बेस्ट फॉर फोर्स। मतलब आलिया की काफ़ी बढ़िया एक्टिंग लग रही है उस फिल्म में, बाय द वे मैंने अभी तक देखा नहीं है उसको, सिर्फ ऑब्वियसली आई हैव सीन द ट्रेलर बट नॉट मच, बट आई मस्ट टेल यू दैट दैट फिल्म सीम्स लाइक वंस अगेन आलिया हैज डन एन अमेजिंग जॉब। बट वेल, व्हाट हैज बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब इज दिस गाना जो नंबर 16 से सीधा 6 नंबर पर आया है, एंड दैट इज कॉल्ड माशुका कॉकटेल 2 फॉलोड बाय गाना नंबर 5। जी हाँ,

0: सरप्राइजिंग कि ये गाना फिलहाल इतना आगे कैसे बैठा हुआ है। होता ना, कुछ लोग छुप के बैठ जाते हैं, उन पे नजर ही नहीं पड़ती, इसलिए वो उसी जगह पर बैठे रहते हैं। 4 से 5 पर इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं दोनों गाने बैक टू बैक, एंड आई एम गोना कम बैक एंड गिव यू मोर न्यूज़, एंड ऑफ कोर्स साथ ही मैं बताऊंगी आपको टॉप 4 गाने कौन से हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर इज अ न्यू गाना दैट हैज मेड एंट्री इन द टॉप 4 टुडे। स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट।
1: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Trending song, number 6.

0: सुबह के 5 बजे जिम पहुंचना, जी हाँ, दैट्स व्हाट द बॉलीवुड स्टार्स क्लेम। और अगर मैं 5 बजे सुबह उठ जाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने तो नेशनल अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 विद रेणुका।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: मुझे धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं, बोला कि जाइए सजना, आज कौन से नंबर पर रखा है आपने, पहले नंबर पर तो नहीं है, नहीं मतलब कुछ भी। और साथ ही साथ में धमकी ये भी आई है कि अभी अभी जो गाना मैंने चलाया था, जी हाँ, वो था जो हमारा, मैं खुद ही शक कर रही थी, मैं बोल रही थी कि नंबर 5 पर जो गाना है पति पत्नी और वो दो का, हमने वहीं लगाया दिल, वो मतलब कैसे टिका हुआ है। तो मुझे धमकी आई है कि अगली बार ये गाना टॉप 10 में नहीं सुनाई देना चाहिए। अरे यार, मतलब सीरियसली ये धमकी दे के मुझसे काम कराओगे कि आप मेरे ये दिन आ गए। रेडियो मस्ती 24/7 पर द टॉप 4 सॉन्ग्स ऑफ द डे। Yes, it is चाहिए सजना। आय हाय, क्या गाना है यार, हर बार दिल दहल जाता है। Alright, ये एक गाना है। दूसरा, ये जो गाना मैं आपको बताने वाली हूँ, कह रही टॉप चार्ट्स में ही नहीं था यार फॉर मेनी वीक्स।
2: समझे थे हम,
0: जी हाँ, आपने सही पहचाना, दोनों के दोनों गाने धुरंधर से ही हैं। धुरंधर द रिवेंज, टू बी ऑनेस्ट, एंड देन देयर इज वन गाना विच सेज, यार धुरंधर की लगाओ व्हाट, नाउ दैट गाना हैज एक्चुअली कम फ्रॉम 7, इट हैज कम टू द टॉप 4, इजंट दैट अमेजिंग, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ वन एंड ओनली सॉन्ग। ये राज भी गहरा हुआ कि इन सब में से नंबर 1 पर कौन सा गाना होगा आज के दिन में। गहरा हुआ ये राज, और भी गहरा हुआ। देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस क्या कहते हैं, नंबर 1 पर कौन सा गाना होने वाला है। रेडियो मस्ती 24/7 शॉर्ट ब्रेक। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: चलिए नंबर चार का खुलासा तो हो चुका है, तो रह गए तीन गाने एंड सरप्राइज सरप्राइज और नॉट सो मच सरप्राइज, तीनों ही गाने धुरंधर के हैं। जी हाँ, या पहला कह लीजिए या दूसरा धुरंधर कह लीजिए, लेकिन है तो वही के। गुड इवनिंग एवरीवन।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: And what I totally enjoy is कि यहाँ पर धमकियों के रूप में मतलब गाना गा के भी लोगों ने भेजा है। आरती थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वो गाना अपना भेजा है। अगर आपने बिना ट्रैक के भेजा होता ना तो सीरियसली शायद मैं बहुत दिनों तक शो ना कर पाती। अंतरा के साथ में मिलके वो जो साजिश थी आपकी कि भाई गहरा हुआ हम गहरा हुआ नहीं जाइए सजना, हम जो गा के बता देंगे, गहरा हुआ गा के बता देंगे, बड़े सारे गाने इस तरह से कर देंगे रेणुका को कि वो बिल्कुल मतलब हमारे कहे हुए गाने को नंबर वन कर दे, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मानती हूँ। क्या है ना कि भाई उस समय चाहे मैं मान भी जाऊँ लेकिन बाद में मैं बिदक सकती हूँ, क्योंकि जैसे करण जौहर का काउच बॉलीवुड का अनऑफिशियल लाई डिटेक्टर टेस्ट बन चुका है। यू नो, लोग आते हैं, फिर हंसते हैं, गॉसिप करते हैं और फिर अगले दिन कहते हैं मैंने ऐसा कब बोला, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कहने वाली हूँ, मैंने ऐसा कब बोला। सो रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, वंस मोर आई एम गोना प्ले द टॉप थ्री गानास एंड
2: सारियां विसर गया रामा वे खेड़े पासे,
0: एंड आई एम गोना लीव यू विद इन में से नंबर वन कौन सा होने वाला है, यू हैव टू टेल मी। जी बिल्कुल, क्या गाना है जाइए सजना फॉलोड बाय गहरा हुआ नंबर वन टू थ्री।
2: ये नामाने फिर से नैना भरे समझे।
0: दिस इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग एंड आई वॉज थिंकिंग कि इतने दिनों तक ये गाना कैसे हमारे से बिल्कुल मिस हो गया यार, ये कैसे टॉप चार्ट से निकल गया और इसको किसी ने पूछा भी नहीं। आई वुड नॉट बिलीव इट। रेडियो मस्ती 24/7 पर गाना नंबर तीन कमिंग अप राइट नाउ एंड देन बस आप ही के कहने का इंतजार है कि नंबर वन कौन सा होना चाहिए, मैंने तो सोचा ही नहीं है।
3: Trending song number three.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: It's time for
4: Musty Song of the Hour.

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: And on that note, once again, a gentle reminder that guys, the Lion City Challenge is samay apni full steam ahead. Ji ha, absolutely looking for the right players. So agar aap aana chahte hain is game mein, which is the one of its kind, the first time ever in Singapore. Come on guys, create some history. Singapore mein rehte ho, thode maze muze karo. Radio Masti 24/7 aur Masti Media Network ke saath mein. Aapko pata hai ki jab hum kuch karte hain, to kamal dhamal hi karte hain. To aa jao, just write Lion and WhatsApp to us. Hum aapko do sawal bhejenge. Woh do sawal ke jaise hi aap hume jawab bhejenge, aur woh sahi jawab hone chahiye, uske baad hum aapko phase 2 mein leke jayenge. Aur phase 2 ka matlab hai, tayar हो जाइए थोड़ा, मतलब हेयर के लिए, थोड़ा मेकअप के लिए, थोड़ा लाइट्स कैमरा एक्शन के लिए, और उस हॉट सीट के लिए जहां पर बैठेंगे आपके होस्ट और साथ में आप, टू प्ले द गेम. यस,
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
4: हाँ राइट भाई, हम तो जा रहे हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं. फॉलोअर्स से याद आया कि बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ फॉलोअर्स भी काउंट होते हैं, है ना. किसी के 50 मिलियन, किसी के 80 मिलियन, किसी के कुछ. लेकिन असली सवाल ये है कि कितने फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स में से कितने ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपको घर शिफ्ट करना हो तो कोई मदद करेगा. अच्छी असली पॉपुलैरिटी का टेस्ट तो वही है बॉस. तो ऑन दैट नोट मैं निकल रही हूँ यहाँ से. रेडियो मस्ती 24/7 पर दो गाने, और उसमें से कौन सा नंबर वन होगा ये यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली एज सून एज आई गो अंडरग्राउंड. ओके, मुझे नहीं देखने मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 1 आवर एटलीस्ट, उसके बाद में देखूंगी. चलिए, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड. आपका वीकेंड, मेरा वीकेंड शुरू होता है अब ऑन रेडियो मस्ती 24/7. इट इज टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, एंड आई ऑलवेज से स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स. लव यू ऑल, बाय.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
6: Check it out.
3: Trending song number 2.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Trending song. Check it out. Number one.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

आकाश का सोना मन

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए।
1: ये झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल कि जैसे

ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है। मुझे चांद पे ले चलो। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू रात अकेले है। The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a Masti Bhara weekend.

0: का फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
3: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
2: थैंक यू
4: थैंक यू
3: थैंक यू
1: थैंक यू, वी लव यू।
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: घर से बुला के प्रश्न से मैं धोखा देती हो।
1: अच्छा साला ठीक है, कुछ भी हो ठीक है।
2: वादा रहा ना।

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसी स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो। बाबू घबराते हैं, बाबू घबराते हैं,

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.